रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रबाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। ये है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा व जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फन पारे नहीं है बल्कि ये कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तख्लीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर 17

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1 4 4

1-800-1860-4 1-800-1807178 1-800-1807199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM। RJ

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026।

अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम। दोस्तों, रेडियो चनार की हॉट इस फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्स अप। मैं हूँ आपका साथी इजाज़ ज़ूस।

फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चनार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स का, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर फॉलो करने के अलावा कमेंट्स में प्यार जरूर दें। याद रखिए, आपका प्यार बनाता है रेडियो चनार को सही मेरे यार। सुनने के लिए रेडियो चनार और दिखाने के लिए अपना प्यार दुनिया के किसी भी कोने से या कोने में सुनने के लिए आप डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या एप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। लॉग इन करें www.radiochanar.com पर। हर दिल की धड़कन रेडियो चनार, मैं हूं जॉक्स।

0: Kom här ja.
1: Radio Chennai, Radio Radio Chennai. Weather update, weather update. Radio Chennai, Radio Radio Chennai. Weather update.
2: और इस फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप मैं हूं जग्स सर ब्रदर आज का वेदर
1: रेडियो चैनल
2: क्या कहता है आज का मौसम क्या होगा मौसम फुसकी या होगा ऑसम आइए बताते हैं
1: रेडियो चैनल वेदर अपडेट
2: जी हाँ आज मौसम जो है मोस्टली क्लाउडी होने वाला है दैट मीन्स सूरज और बादलों के बीच में अबा डैशम चलता रहेगा
1: रेडियो चैनल
2: कभी सूरज बादल के आगे कभी बादल सूरज के पीछे टू मच फन समझ गए ना पार्टली क्लाउडी क्या होता है सो मोस्टली क्लाउडी होने के साथ साथ कोशिर वनन दोहस दम चुदम चुदम इट्स गोइंग 31 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम फॉर टुडे यू इंडेक्स वीक पर ह्यूमिडिटी 70 पर होगी और विंड स्पीड अभी के लिए 3 किलोमीटर विजिबिलिटी 6 किलोमीटर आज का सनराइज हुआ 5:54 पर आज का सनसेट होगा 7:17 पर और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार सिटी हक्ट मेरे यार धड़काते रहो रे

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
3: That's the radio channel key heart is frequency but viral on WhatsApp. Viral on WhatsApp एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल रहता है हम आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि कहत ज्ञानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जाने वायरल है तो WhatsApp पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए करते हैं एक डिस्प्यूट की बात जो सुलझ गया पुलिस स्टेशन में। अब ये डिस्प्यूट था 3 साल के लड़के का उसकी माँ के साथ। जी हाँ, मामला बुरहानपुर का है जहां पर एक 3 साल का बच्चा जा पहुंचा पुलिस स्टेशन में और पुलिस में करी कंप्लेन कि उसकी माँ उसके चॉकलेट छीनी है। पुलिस के सामने FIR कंप्लेंट भी लिखवाई और पुलिस से कहा कि एक्शन करो भैया, हमारे चॉकलेट छीन लिए गए हैं। मतलब अगर आप वीडियो देखेंगे हंस बस कर लोट पोट हो जाएंगे, क्योंकि ये मामला ही वैसा है। बच्चे को समझ नहीं, बच्चा पुलिस स्टेशन जा पहुंचा तो पुलिस वालों ने भी मजे लिए। ऐसी क्यूटनेस कौन मिस करेगा भाई। अब पुलिस वालों ने भी मजे लिए और मजे मजे में कंप्लेंट तो लिखी और साथ ही बच्चे से उस पर साइन भी करवाए। नन्ना सा ना समझता बच्चा आज यहाँ बोलने लगा, आता मौजी सटक ली रे। वायरल था तभी वो सब पर था।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दरकन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है आई थिंक अबाउट यू बट आई डोंट से इट एनी मोर।
5: मुराद तो पूरी हो गई।
6: और मेरी कमजोरी
4: हर दिल की दरकन रेडियो चुनाव सिडे हट दरका।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप पे
1: तभी व्हाट्सएप पे वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
1: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

0: जूस। कौन आया?
1: हर फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप। वक्त हो चला है कि वो सब शो में टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन टॉपिक बताने से पहले बता दूं आपको कि आपने कैसे जुड़ना है, कैसे अपनी बात हम तक पहुंचानी है, कैसे करनी है, फोन के थ्रू मुलाकात कैसे आप पहुंचा सकते हैं अपनी वाणी वहां जहां जहां जाती है रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी। हर दिल की धड़कन को धड़काने के लिए, आंखों को भड़काने के लिए और अपनी बात पहुंचाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज 8899904। आप जी हाँ डीएम भी कर सकते हैं ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से मिलूंगा इंस्टाग्राम पर। कुछ लोग जो हाफ टाइम पर मैसेज करते हैं सोचते हैं कि मैसेज जाया हो गई, हमने तो कर दी रिप्लाई नहीं आया। देखिए दोस्त, लाइव होता है 9 से 5 बजे तक, तो लाइव शोज में जब आप मैसेज करते हैं तो पार्टिसिपेशन जो है की जाती है, मतलब आपकी मैसेज सब तक पहुंचाई जाती है, लेकिन उसके बाद जो मैसेज होते हैं वो हम अगले दिन आते ही सब तक पहुँचाएंगे, वादा है हमारा। मुझे बताया आपको इंतजार है टॉपिक का। अब टॉपिक क्या बताए, दुनिया भर में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जाते हैं कि सोचा आज हम भी इन रिकॉर्ड्स को तोड़ दे। जी हाँ, तेज चलने का रिकॉर्ड, उल्टे हाथ से लिखने का रिकॉर्ड, उड़ने का रिकॉर्ड, बैठने का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। मुझे लगता है मेरा रिकॉर्ड फंसने वाला था। पते की बात यह है कि आज हम रिकॉर्ड्स आप तक पहुंचाएंगे, ऐसे ऐसे अतरंगे से रिकॉर्ड, ऐसे ऐसे फन फैक्ट्स कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये दिमाग से बने थे रिकॉर्ड्स या बनाए गए थे दिल से। रेडियो चनार 90.4 एफएम रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड आप तक पहुंचाएंगे। आज हम बताएंगे आपको अतरंगे रिकॉर्ड्स, जी हाँ ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स जो दुनिया में बनाए गए, जिनके बारे में आपको शायद पता ही नहीं होगा। फिलहाल के लिए कुछ गाने आपके लिए, कहीं जाना नहीं, हर दिल की धड़कन को धड़काना है आपने। जी हाँ, रेडियो चनार हर दिल की धड़कन और हाँ इस धड़कन को धड़काते हैं आप। मैं हूं जॉक ज्यूस, रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर शो व्हाट्सअप, मेरी जान सिटे हक्ट, धड़काते रहो।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

दोस्तों, हर दिल की धड़कन रेडियो चुना 90.4 FM आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। बॉलीवुड के अपडेट से लेकर टेक वर्ल्ड से न्यूज आप तक पहुंचाई जाएगी। जरा सा इंतजार, देते रहे प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन जॉक्सी उसके साथ शो हुआ सबसे डायरेक्ट, धड़काते रहो।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: अरे ये सब हटा रहे, सावन की घड़ा चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: News.
1: ¿Cómo la veo?
2: Bollywood News.
3: The Story Radio Show 90.4 FM Show was a Sugar segment Bollywood News.
2: Bollywood News.
3: जी हाँ, Bollywood News में आइए बात करते हैं सिद्ध मूसेवाला की.
2: Bollywood News.
3: सिद्ध मूसेवाला is trending and has become the world's third most followed hip hop artist. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पॉटिफाई की. ही इज वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड हिप हॉप आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, नाउ ट्रेंडिंग नंबर 3. दैट्स व्हाट लेजेंड्स आर मेड ऑफ. जी हाँ, मेटल एंड म्यूजिक और इस फ्रीक्वेंसी से धड़काते रहो.

0: to Zeus.
1: Kon aaya?
2: Bollywood News. Bollywood News.
3: Aur is frequency par Bollywood News. Ji haan, Bollywood News mein aaiye baat karte hain bhai jaan ke bhai jaan Sohail Khan ki. People are concerned about Sohail as Sohail has lost 12 kgs of weight abruptly. अब जब उन्होंने पिक्चर शेयर की तो फैंस, जी हाँ, फैंस, एक्टर्स, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड टू सी हिज नोटिसेबल वेट लॉस और एवरीबॉडी वाज कंसर्न्ड कि क्या है मामला. सोहेल ने रिवील किया कि उनका स्टॉमक जो है दैट वाज बग इफेक्टेड और उसकी वजह से जो है उन्हें देख के खाना पड़ता है और खा के देखना पड़ता है कि भैया क्या खा रहे हैं. अब उसकी वजह से जो वेट लॉस हुआ है, सोहेल हैज replied to the fans that he is totally okay and totally fine and soon presently he will be back to his normal routine. जी हाँ, थोड़ा सा वेट लॉस हुआ है, थोड़ा है बाकी, अब वेट गेन करेंगे और जिंदगी स्मूथ चलने लगेगी. रेडियो चुनाव 90.4 FM. अगला सेगमेंट टेक टॉक्स. मैं हूँ जॉग ज्यूस. आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई बात मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, 8899 0049 0049 नंबर. सिरे हट धड़काते रहो.

0: que
1: हाय मैं हूँ आरजे ज़ूस।
2: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
3: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
4: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिन।

0: Kom maar.
1: Tech Talks with RJ Zeus.
2: Radio Channel 90.4 FM show. What's up or what's a sugar segment? Tech Talks, जहाँ पर हम tech news आप तक पहुँचाते हैं. तो आइए बताते हैं आपको एक Chinese man का किस्सा. जी हाँ, इस चाइनीज मैन के चलते सिम जो वर्थलेस माने जाते थे, मतलब ओल्ड सिम कार्ड्स जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, अब वापस इनको खरीदने में लोग लगे हुए हैं. रीजन भैया सिंपल है. एक चाइनीज मैन जिसने एक्सट्रैक्ट किए 191 ग्राम ऑफ गोल्ड वर्थ $29,000 फ्रॉम ओल्ड सिम कार्ड्स. मतलब कोई सीखे इनसे दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए. ये जो सोना है और सोना जो इसने एक्सट्रैक्ट किया है उसकी वर्थ जो है $29,000 बताई जाती है. रुपीज़ में कन्वर्ट आप कर लेना, बट ये है कि बंदा तो अमीर हो गया जस्ट बिकॉज इसके पास पुराने सिम पड़े हुए थे और उस वजह से सिम्स की जो डिमांड है, मतलब पुराने सिम कार्ड की जो डिमांड है, बताया जाता है बहुत बढ़ चुकी है. रेडियो चुनाव 90.4 एफएम. पहले पूछते थे व्हाट इज मोबाइल नंबर, अब पूछेंगे व्हाट इज योर ओल्ड सिम कार्ड नंबर. भैया जी साबुत का साबुत सिम पिघलाइए और सोना कर ले जाइए. मैं हूं ज़ूस, आप सुन रहे हैं मजेदार शो. व्हाट्सअप मेरी जान सटे हक्ट आहा धड़काता रहो.

0: कौन आया?
1: लो जी आ गई वो घड़ी जिसका मुझे नहीं होता है इंतजार, क्योंकि मुझे आपसे है प्यार, लेकिन मेरे यार जाना तो पड़ेगा। जी हाँ, मोहब्बत 12 महीने रहती है और 12 महीने 12 तरीकों से हम अपनी मोहब्बत आपके साथ निभाते हैं, आपको बताते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, आपकी कही सबको सुनाते हैं। अब सुनाएंगे, बताएंगे, कहेंगे।

और बताएंगे, सब तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो होगा कल, क्योंकि आ चुका है जाने वाला पल। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आ रही है आरजे दीपा लेकर शो चिनार बीट। जी हाँ, दीपा के हिसाब से देखिए तो वो तो संडे को भी आए और साल 13 महीने का बनाए। घूर रही है मुझे ज्यूस, मैंने कब कहा मैं संडे को आऊंगी। फिलहाल कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, आज के लिए आ जाओ, संडे का फिर कभी डिसाइड कर लेंगे। मेरा जाने का टाइम हो चला है, कुछ कहना चाहते हैं तो डिंकचका इंस्टाग्राम पर करता हुआ दिख जाऊंगा मैं। ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो सर्च जरूर करें, ताकि फॉलो बटन सुच्चा सा दबाओ। तो टुडे आई एम साइनिंग ऑफ, इतना ही आज बस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुशबाश, मा सलामा।

Jerry B. Jerry Beats with Harjeet Diva, only on Radio Channel 90.2.

करने आई हूँ वही जो करना है मुझे। नाम तो पता है और काम में क्या रखा है वो तो बता ही देंगे, बस आगाज हो चुका है शो चुनाव और बीट्स का विद लॉट ऑफ फन विद लॉट ऑफ बीट्स ऑन रिपीट, क्योंकि बस ये है शो चुनाव बीट।

सौरभ शो चुनार बीच सब एंजॉय कर रहे हैं ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम. ढेर सारी बातें हो रही हैं एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि शो चुनार बीच स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारी बातें करनी है और मेरे पास तो आज का थोड़ा लंबा सफर है. अब लंबा क्यों है, हम क्या ही करें. अब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना तो मज़ा आ जाता है. अब आप गेस करना है आपको कि एक्स्ट्रा टाइम क्यों है आज मेरे पास. थोड़ा सा ना मैं आपकी वो कहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और सोच विचार करके आप मुझे बताइए और पहुंचाइए आपके विचार. और प्यार तुम्हारा बढ़ चुका है तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है. फिलहाल के लिए मैं शो का ऐसा बन चुकी हूँ और लंबी बिस्टन यानी कि 3 दिनों का ये जो दूरी था ना अभी ये ख़त्म हो चुका है. अभी बात करनी है आपकी मेरी बातें. अ लॉट ऑफ फन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन. लाइक द सुपर एक्साइटेड की बात बैक सॉन्ग्स आप एंजॉय करेंगे अपनी मुझे सुनाएंगे मैं आपको अपनी सुनाऊंगी और यूँ ही सफर चलता रहेगा.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

रूट जो है ओपन है, अब आराम से जा सकते आ सकते हैं जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू। और उसके अलावा हैवी मोटर व्हीकल्स जो है वो भी अलो किया उनको जा रहा है आज भी सुबह से लेकर शाम तक, और टाइमिंग बस थोड़ा ख्याल रखिएगा, सुबह से लेकर शाम के 8 बजे तक ही उन्हें अलो किया जाएगा। और जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं वो सुबह से लेकर शाम के 12 बजे तक उन्हें अलो किया जाएगा। रोड की कंडीशन काफ़ी क्लियर है, स्मूथ ट्रैफिक है, सो आप आराम से अपने डेस्टिनेशन को इन्जॉय कर सकते हैं। सो ज़रूरी है सीट बेल्ट लगा के गाड़ी, वो तो हम सबको ही पता है, एंड वी आर इनफ रिस्पॉन्सिबल दैट वी शुड नो दैट, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, इसे हमने निभाना पड़ेगा। और कोई भी गलती ना हो उसके लिए थोड़ा सा हमने दिमाग को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए कितना राइमिंग हो गया ना, ऐसा ही राइमिंग हो जाए ना दिमाग हमारा दिल, जब हमें लगे कि हमने पॉजिटिव काम किया है और ऐसी कोई चीज़ नहीं की जिससे हमें गिल्ट में रहना पड़ेगा। देखिए सिग्नल ना तोड़िए, दिलों को जेड़ने का काम कीजिए। अब सॉन्ग ही ऐसा है कि दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड तो नहीं है बट दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड है। अब आपने क्या कुछ किया है कि अपने दिल को मनवाने के लिए, पर फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर है आपकी सुनी जाएंगी और आपको कुछ मैसेज पहुँचाने और लोगों तक, तो हम पहुँचाते हैं आपकी मैसेज वहाँ वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पहुँचती है। रेडियो चुनाव किया

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है,
1: व्हाट्सएप पे
2: तभी व्हाट्सएप पे वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: चुनार।

Chart Beats with RJ Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

खबर ऑनलाइन लेकर मैं हूँ आज़र। तो वन पूछो तो खबर विस्तार सान क्या चर्च खबर तो कत बार समझो इस कत का तेरा मेरा रिश्ता पुराना। अभी हर जगह सोशल मीडिया हो कोई मूवी थिएटर हो अभी यही बात है कि आवारापन टू क्या तासुम हुए यार। अच्छा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ ये तो हम सबको ही पता है और आवारापन का जो क्रेज है ना कुछ लोगों का ये कहना कि मूवी देखने के बाद पैसा बर्बाद हो गया क्योंकि कोई स्टोरी लाइन ही नहीं है। मोहित सूरी की मूवीज में जो स्टोरी लाइन होती है अभी नितिन ने मूवी को डायरेक्ट किया है तो डायरेक्टर चेंज होता है लेकिन विजन जो है मूवी का बिल्कुल बदल जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि मोहित सूरी जैसी मूवी तो नहीं है आवारापन टू और ये बिल्कुल भी हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतर गई। अब ये समझने वाली बात है कि बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं मूवी को, इमरान हाशमी का रोल हो या फिर ओवरऑल स्टोरी लाइन हो मूवी की या फिर दिशा पाटनी या फिर इमरान हाशमी की जो केमिस्ट्री है मूवी में उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया गया है। सो इट्स ओवरऑल लाइक फॉर पीपल इट्स 10 out of 8 एंड फॉर पीपल इट्स 10 out of 5। सो आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से 10/10 है 10/9 है क्या रेटिंग देंगे आप मूवी को मुझे बताइए। शुगर सेवन जो है आप सुन रहे हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 FM। अभी दासू हो रही है 98.10 crore मूवी ने कमा ली है। आपको क्या लगता है और कमा लेगी या फिर रुक जाएगी बताइए। शुगर सेवन जो है आप सुन रहे हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 FM हर तल की दरकत।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
3: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

सोचना और बीस और बात हम कर रहे हैं आज कश्मीर और इवेंट इंडस्ट्री के बारे में। कश्मीर में इवेंट इंडस्ट्रीज का तो काम कभी बंद नहीं होता है। अगर हम देखें तो आए दिन कोई ना कोई इवेंट होता है, शादियों से बड़ा इवेंट कोई भी नहीं। यानी कि जितना ज़्यादा शादियों में इवेंट्स में, यानी स्पेशली शादी वाला इवेंट, इतना बड़ा इवेंट होता है फॉर एवरी कश्मीरी जिन्होंने ये सोच लिया था कि अटेंड करूँ आज जो मैं नाम है तवेरा मॉडिफाइड, या फिर हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हम फैंसी तरीके से अपने शादियाँ उनको एक इवेंट की तरह पेश करते हैं। एंड आई बिलीव कि अभी इवेंट इंडस्ट्री काफ़ी आसमानों को छू रही है, या फिर बॉलीवुड का अभी आए दिन यहाँ शूट्स चल रहा होता है, या ओवरऑल इवेंट्स होते रहते हैं टूरिज़म के, गवर्नमेंट के, या फिर प्राइवेट इवेंट्स, हर चीज़ अभी आसमान छू रही है। एंड स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट इवेंट इंडस्ट्री कश्मीर में क्या मुफाद है उसका, एंड कैसे अभी इवेंट इंडस्ट्रीज बढ़ रही है कश्मीर में, उस बारे में बात हो रही है। आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं 8999904 पर एक व्हाट्सएप कीजिए शो चिनार बीस का हिस्सा बन जाइए। आई नो आप सोच रहे होंगे कि म्यूजिक ऑन डिमांड क्यों नहीं लगा अभी, तो आपको बता दें कि आज म्यूजिक ऑन डिमांड का टाइम थोड़ा सा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी सरप्राइज है जो मैं आपको कुछ ही देर में दूंगी, तो आप भी शो का हिस्सा बन जाइए 8999904 पर एक व्हाट्सएप कीजिए शो चिनार बीस का हिस्सा बन जाइए।

बिल्कुल, कश्मीरी इवेंट्स देखकर तो बस दिल धड़कता ही रहता है. अभी अगर हम देखें कश्मीरी इवेंट हो या वेडिंग इंडस्ट्री, इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट. एंड ओवरऑल अगर हम देखें हाई एंड एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स यहाँ पे होती है आज. गवर्नमेंट जो बैक टूरिज्म जो इवेंट्स है वो बढ़ रहे हैं और लोकेशन भी आइकॉनिक है. एंड दैट्स श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और मच मोर. अभी बहुत सारी अन एक्सप्लोर्ड या ऑफ बी डेस्टिनेशन जो है वहाँ पे भी अभी जो इवेंट्स है वो किए जाते हैं. डेस्टिनेशन

0: especially luxurious setup on Dal Lake, houseboat, grand resorts. ये अब एक आम सी चीज़ बन चुकी है और events काफ़ी बढ़ चुके हैं, यानी कि रोज़गार बढ़ रहा है, event industry बढ़ रही है यहाँ पे. corporate या माइक MC का जो अभी ये हम कहते हैं कि अभी एक ऑरा ही डिफरेंट है, अभी एक वाइब भी डिफरेंट है, वो भी बढ़ रहा है क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो ऑफ साइट्स होती है, ट्रेड एक्सपोज, बायर सेलर मीटअप होता है. सो ओवरऑल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कश्मीर के डिफरेंट प्लेसेस पे, स्पेशली आई ऑलरेडी मैंशनड इट, आइकॉनिक लोकेशंस पे. सो इवेंट्स बढ़ रहे हैं, चीज़ एक्सप्लोर हो रही है, इवेंट इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है. ओवरऑल अगर हम देखें अभी कश्मीर की इवेंट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे रोज़गार बढ़ चुका है, अभी इवेंट्स कैसे हो रहे हैं, कितना ज़्यादा चेंज आ गई है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेडिंग हो या फिर कश्मीर इवेंट्स हो, कितना ज़्यादा बढ़ चुका है वो, उस बारे में बात हो रही है. अभी शो कैसा बन सकते हैं 8899-0494 पर एक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो का हिस्सा बन जाइए मेरे साथ.
1: तुषार कपूर की आवाज़ में.

आप भी है और हम बात कर रहे हैं आज कश्मीर और कश्मीर की इवेंट इंडस्ट्री के बारे में, बिकॉज व्हेन वी सी कश्मीर का इवेंट इंडस्ट्री कितना ज़्यादा ग्रो किया है इवेंट इंडस्ट्री ने कुछ टाइम से, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कि अभी अगर हम देखें कोई से बड़ा सा बड़ा इवेंट क्यों ना हो, एवरीबॉडी इज़ बिजी, यानी कि इवेंट इंडस्ट्री के हम कह सकते हैं कि हर मौसम में चार चांद लग जाते हैं, चाहे फिर अभी हम समर्स की बात करें या फिर ऑटम में या फिर विंटर में, एक अलग ही मज़ा होता है. एंड जो काम करते इवेंट मैनेजमेंट वाले वो दैट इज़ incredible. And we are talking about कि कैसे government की तरफ से भी अभी events होते हैं, यहाँ films की वजह से जो shooting होती है उसमें जैसे events को organize किया जाता है, या event industry वहाँ पर भी सबसे आगे होती है. तो मुझे लगता है कि hats off to them कि वो उन इवेंट्स में चार चांद लगाते हैं, फिर उनका जो फैसिलिटीज़ है, अरेंजमेंट्स होते हैं, या फिर ओवरऑल अगर हम देखें तो मेहनत जो लगती है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है. एंड वी कैन से कि अभी इवेंट इंडस्ट्री कश्मीर में काफ़ी ग्रो कर रही है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जो चेंज आ चुके हैं कश्मीर में, एंड वी हैव एक्सेप्टेड इट. एंड स्पेशली वेडिंग्स का भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा चेंज तो वेडिंग्स की वजह से आई है, कि पीपल they are more into destinations wedding, they are more into destination, and most of the events they are like highly luxurious weekends, so celebrate bhi us tarike se kiya jata hai. To isliye abhi agar hum dekhe to event industry kafi zyada grow kar rahi hai Kashmir mein. तो आप मुझे बताइए कि आपकी राय क्या है इस टॉपिक के रिलेटेड, आपको क्या लगता है, क्या सच में वाकई कश्मीर की जो इवेंट इंडस्ट्री वो ग्रो कर रही है? 8899-04904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चिनार बीस.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: है।
1: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
2: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Channel 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: на мъжкелина. Нано-кене.
1: Орче Сахил. The dawn of radio.

दिल का आलम है और आलम में हम हैं, आप हैं, साथ है, जज्बात है, हालात है, ख्यालात है और इरादा भी मेरा बिल्कुल नेक है, ख्यालात नेक है कि आज ढाई से लेकर 3:30 तक आप शो म्यूज़िक ऑन डिमांड एंजॉय करेंगे, यानी कि 1 घंटे का ये सफ़र है जहाँ पर आप अपने फेवरेट ट्रैक सुन पाएंगे। और ये कैसे हो पाएगा, असरा तो नहीं है और असरा के

पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए। आयमन की रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर, उनकी रिक्वेस्ट पूरी हमने कर ली, आपकी भी कर सकते हैं, बस 8899904904 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए, जो कि बराबर 3:30 तक चलेगा। आप सुन रहे हॉरस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 91.4 FM।

The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है. सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है. म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ

करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्यूनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

जिक्र तेरा। तो ये हारने वाली बात नहीं है, दिलनशी की रिक्वेस्ट आई है और जीत है उनकी की उनकी रिक्वेस्ट पूरी हुई है। 8899-04904 पर आप भी कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं अपना फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए। आपने 8899-04904 पर कॉल करनी है, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

देखिए यहाँ पर स्नोबर के लिए ये ट्रैक तो हमने डेडिकेट कर लिया है, बस हमें तो चाहिए आपका साथ। और आप अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8999904904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड कैसे बन जाइए। और आज 2:30 बजे तक आप अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM पर।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

देखिए हम जाएंगे कहाँ है तो आपके साथ ही बराबर सफर पे चार बजे तक। फिलहाल के लिए शो म्यूजिक ऑन डिमांड आप एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर यासिर की रिक्वेस्ट है ये स्ट्रा के लिए आप भी एंजॉय कर रहे हैं। हुस्न है सुहाना, मौसम भी तो है थोड़ा सा दीवाना, तो दीवाने मौसम में अपना फेवरेट ट्रैक आप एंजॉय कर सकते हैं 8899049 04 पर एक व्हाट्सएप कीजिए शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

मेरे मन ये बता दे तू किस और चला है तू मितवा. व्हाट अ ट्रैक, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक यू जस्ट हर्ड ओनली ऑन रेडियो जना 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन. Shafqat Amanat Ali Khan and Carol is on the vocals, and amazing movie, amazing track, and amazing music.

0: ना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है।
1: और छे साहिल
0: डॉन को
1: डॉन और जे साहिल द डॉन ऑफ रेडियो। Yes, the dawn of radio. RJ Sahil Muzaffar in the house and you're tuned into 90.4 FM Radio Janar. Show ka naam Dil Ki Baat Sahil ke saath. जुड़ जाइए हमारे साथ, बताइए अपने दिल की वाणी। हम वादा करते हैं पहुंचाएंगे आपकी कहानी वहां वहां तक जहां जहां तक जाती है भैया रेडियो चिनार की आवाज। कश्मीर के शिकाराज की हम बात कर रहे हैं और शिकाराज की जब भी बात करते हैं, ये कश्मीर का एक ऐसा आर्किटेक्ट है, एक ऐसा आर्ट है, ऐसी फनकारी है और ऐसी एक आइडेंटिटी है जो पूरी दुनिया में मशहूर है और लोग आते हैं और शौक से शिकारा राइड पे जाते हैं। अभी हमारे साथ आमिर जुड़े थे, वो कहते हैं कि बचपन में हम अपने मम्मी पापा के साथ शिकारा राइड पे गए थे, डल से डल लेक के किनारे बुलवार्ड रोड से मैं गया था चार चिनारी तक। वो कहते हैं कि मैं बहुत छोटा था तब, लेकिन जब मैं आज से 20-25 साल पहले की वो बात कर रहा हूँ तब डल बहुत क्लीन था, नीट एंड क्लीन। और अभी रिसेंटली हम गए थे कुछ दोस्त मिलके, लेकिन जब डल की हालत देखी और कुछ ऐसी जगह डल के अंदर है जो वहाँ पे बहुत सी गंदगी है, बहुत घास है और दिल रंजीदा होता है। देखिए दोस्त,

तो ये बात बिल्कुल सच है, ये हम सबकी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने इन वाटर बॉडीज को, इन रिसोर्सेज को और ऐसी जो आइडेंटिटी है हमारी, उसको प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये कश्मीर की शान है और हम सबकी यही जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को, हम इन इन वाटर बॉडीज को, नेचुरल ट्रेजर को संभाल के रखें, ताकि हम फख्र से अपनी कल आने वाली जनरेशन को हवाले कर दें, ताकि वो भी इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बातों का सिलसिला यहाँ पे रोक देते हैं, थोड़ा सा विराम देते हैं बातों को, क्योंकि गाना ही एक ऐसा आने वाला है जो आपको मस्त करेगा, क्योंकि इसकी धुन ही ऐसी है। जी हाँ, जी हाँ, असरार की खूबसूरत आवाज मस्त हुआ बर्बाद हुआ। लिसन इन ओनली ऑन रेडियो चिनार, साहिल मुजफ्फर इन द हाउस, लौट के आऊंगा।

यकीनन दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल की धड़कन बन जाती है, जो मोहब्बत के एंथम बन जाते हैं। जब हम 90s की आशिकी की बात करें, ये मूवी एक ऐसी मूवी थी, इसका म्यूजिक आज भी सर चढ़ के बोल रहा है और लोग हर एक गाने को, हर एक लफ्ज़ को, हर एक सुर को एंजॉय कर रहे हैं। एंड ऑल द सॉन्ग्स बिकेम लव एंथम्स नेशन वाइड एंड पीपल आर लविंग दिस म्यूजिक इवन टुडे। और ऐसे ही म्यूजिक से आपको, जी हाँ, रूबरू कराते हैं, सुनाते हैं, आपको कुछ कहानियां बताते हैं और ये सफर यूं ही जारी रहता है रेडियो चिनार के इस हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे जिसका नाम है 90.4 FM, जो कि है हर दिल की धड़कन। फिलहाल इस गाने के साथ ही मैं अपने शो को देता हूँ विराम, क्योंकि घड़ी कर रही इशारा, इट्स टाइम टू गो होम। एंड म्यूजिक की जो गाड़ी है, म्यूजिक का जो सफर है, वो शो के साथ खत्म नहीं होता है, क्योंकि सफर और शुरू होता है, क्योंकि सुहानी शाम आप थोड़ी देर के बाद सुनाएंगे। विल प्ले सम बैक टू बैक म्यूजिक फॉर यू, देन सुहानी शाम में कुछ खास पेशकश आपके लिए। फिलहाल आज के शो से दीजिए साहिल मुजफ्फर को इजाजत। टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव एंड सेपरेट सम स्माइल।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए

सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर, एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे, रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कॉन्टैक्ट

0: करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: मैनू एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मंगला ना, मोटरसाइकिल
3: दिला दीजिए ना।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: कोक स्टूडियो भारत सब्सक्राइब नाउ।
1: आदिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मसनद सुनो।

0: चलो चलो चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम आ रही हो, मैं जा रहा हूँ। लगता है रूम में रह गया।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल।

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4
2: FM।
0: रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: सकती।
1: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

चिरे चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प म रे

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: बंदी मुट्ठी लाख की
1: और पीढ़ी चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
0: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।